आती है यार, मंगू रखा फिर मैं कुछ पहियों ना पिफी की निकल आएंगे पिफ के कहती है तुना ना पिफी की या पपुला बायो पाई फुका आपका मुंगित